0: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Maru Mahalla Panyama Kartija Eko Ankar Sadgur Prasad प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसारो अज्ञानथ होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म आकारथ हरे नर ऐसी करै अज्ञानथ तज सारंग धर ब्रह्म तू पूला मोहे लपट्यो दासी संसानथ रहाओ धरणी धर त्याग नीच कुल सेवै हां हां करत बिहावथ फोकट कर्म करै अज्ञानी मनमुख अंध कहावत सत होता असत कर मानिया जो बिनसत सो निचर जानत पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानथ गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ मारू महला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभु डहकावे मनुखाए बिसार हर जियो बिखै भोगै तपत थम गल लाए रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दप तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ बेकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए महासागर समुंद लंगना पार ना परना जाए काम क्रोध लो मोहे ब्यापेओ नेत्र रखे फिराए शीश उठावन ना कबहू मिलई महादुत्तर माए सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलपाए स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाए जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पै मनिया सुभाए गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन ना पाए हरे नार इन बिद पार पराए त्याए हर जी होए मृतक त्याग दूजा पाओ रहाओ दूजा मारू महला पंजवा बाहर टूंडन ते छूट परे गुर कर ही माए दिखाया था अनपव अचरज रूप प्रपेखिया मेरा मन छोड़ना कथू जाया था मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था मोलिया मोल ना पाया जाई कर कृपा गुरु देवाया था रहाओ आदिष्टा गोचर पार ब्रह्म मेरा साधु कथ कथाया था अनहद शब्द दसम द्वार वजयो तह अमृत नाम चुआया था तोट नाही मंत्रशना बूजी या खुट भंडार समाया था चरण चरण चरण गुरसेवे अगड़ गड़ियो अगड़ कड़ियो रस

चूका पहारा कर्म का होए नेह कर्मा सागर ते कंडे चढ़े गुर की ने तरमा सच थानो सच बैठका सच स्वाओ बनाया सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया मारू महला पंजवा बेद पुकारे मुख ते पंडित का ममन का माठा मोनी होए बैठा एकांती हृदय कल्पन गाठा होए उदासी गृह उता चलियो छुटके नाही नाठा जी की कह पै बात कहा आप मुक्त मौको प्रमेले ऐसो कहा लहा रहाओ तपसी करके देही सादी मनुआ दे दस्ताना ब्रह्मचार ब्रह्मचज की ना हृदय पया गुमाना सन्यासी होए कह तीर्थ प्रमयो उसमें क्रोध बिगाना कुंगर बांध पए रामदासा रोटियन के उपावा बर्त नेम कर्म खटकी ने बाहर पेख दिखावा गीत नाद मुख रा गया लापे मन हर हर गावा हर सोग लो मोह रहत है निर्मल हर के संता तिन की तूड़ पाए मन मेरा जा दया करे भगवंता कहो नानक गुर पूरा मिलिया ता उतरी मन की चिंता मेरा अंतर जामी हर राया सब के जाने मेरे जी का प्रीतम बिसर गए बकबाया रहाओ दूजा मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर्जन मैं गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवे तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाओ रूप रंग खुशिया मन पोगण ते शिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहजो सारा माया रंग बिरंग खिने मैं जो बद्र की छाया से लाल पहे गूढ़े रंग राते जिन गुरमिल हर हर गाया ऊच मूचया पार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सोबा।

पहला ना जाना मूर्ख है कोई ना जाना सियाणा सदा साहेब कह रंगे राता अंधन नाम वखाणा। बाबा मूर्ख हां नावे बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ। मूर्ख सियाणा एक है एक जो दोए नाओ मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाउ पाईए बिन सतगुर पल्ले ना पाए सतगुर कै भाणे मन वसै ता अहनस रहै लिव लाए। राजंग रंगंग रूपंग मालंग जोबनते जुवारी हुक्मी बांधे पासै खेलै चौपड़े का सारी। जग चतर सियाणा भरम पुलाणा नाउ पंडित पड़े गवारी। नाउ विसारै बेदस मालै बिख भूले लेखारी कलर खेती तरवर कंठे बागा पैरै कजल चरै। एहो संसार तिसै की कोठी जो पैसै सो गर्ब जरै। अरियत राजे कहां सवाए दोह अंतर सो जासी। कहत नानक गुर सच्चे की पौड़ी रैसी लख निवासी। मारू महला तीजा कर पंजवा अष्टपदी एको अंकार सतगुर प्रसाद। जिसनो प्रेम मन वसाए साचा शब्द सह सुभाए एहा वेदन सोई जाने अवर के जाने कारी जियो। आपे मेले आ मिलाए अपना प्यार आपे लाए प्रेम की सार सोई जाने जिसनो नदर तुम्हारी जियो। रहाओ दिव दृष्ट जागे पम चुकाए गुर प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी है जुगत पछाणे गुर कै शब्द विचारी जियो। संजोगी तन पर मेला होवै गुरमत विचों दुरमत होवै रंग स्यों नित रलिया माणै अपने कंत प्यारी जियो। सतगुर बाजों वैद ना कोई आपे आप निरंजन सोई। सतगुर मिलै मरै मंदा होवै ज्ञान विचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा भुख गवाए आपन लिया किशु ना पाईऐ कर कृपा कल धारी जियो। आगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया। अंजन माहे निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवै सो तत पाए अपना या विचों गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावै वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिरै हंकारी एक ना गुरमुख हो मैं मारी। सच्चै शब्द रते बैरागी होर भ्रम भूले गावारी जियो। गुरमुख जिनी नाम ना पाया मानमुख बिरथा जन्म गवाया। अगै विणना वै को बेली नाही बूझै गुर विचारी जियो। अमृत नाम सदा सुखदाता गुरपूरै जुगचारे जाता। जिस तू देवै सोई पाए नानक तत विचारी जियो। मारू महला पंजवा कर तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। लख चौरासी प्रमते दुलभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू होछै रसल बटायो। अमृत संग बसत है तेरा बिख्या स्यों रजायो। रहाओ रतन जवेहर बन जन आयो कालर लाज चलायो। जे घर मैं तुद रह ना बसना सो कर जीतना आयो। अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो। जहां जाना सो थान विसारयो एक निमख नहीं मन लायो। पुत्र कलत्र गृह देख समग्री इसी मैं उर जायो। जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो। जो भयो कृपाल ता साध संग पाया। जन नानक ब्रह्म त्यायो मारू महला पंजवा। कर अनुग्रह राख लीनो भयो साधु संग। हर नाम रस रसना उचारै मिष्ट गूढ़ा रंग। मेरे मान को अस्थान मीत साजन सखा बंद पयंत्र जामी जान। रहाओ संसार सागर जने उपायो शरण प्रभ की गही। गुरप्रसादी प्रभया राधे जम कंकर किशना कही। मोख मुक्त द्वार जाकै संत रिदा भंडार। जी जुगत सुजान स्वामी सदा रखनहार। दुख दुख दर्द कलेश बिनसै
ਜਿਸ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਮਿਰਤ ਨਰਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੜੇ।